धन में पार्वती सो गई। हे अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। हे मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो।

0: चुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितो नहीं जा रहा, बस इतने ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले। में तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हाँ।

0: अच्छा
1: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुना थे हमारे साथी,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
0: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
1: हाँ,
0: बका है
1: फोन नहीं करा थे।
0: अरे तो घबरा भी वाली बात नहीं है अमन इस बच्चा। देखो तुम का है कि जल्दी भाव खो जाऊ तई, और तुम्हें जा लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। तो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे, तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आद तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना था लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते, सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को, सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
1: तो तुम्हारे कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हैंगे, काहे से सोशल मीडिया को अभी जमानो है गो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे, और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो, और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुना थे, और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
0: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी, तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे, तो
1: अच्छा
0: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ दई, और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो, सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउत है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगा उठेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत कर भी की जरूरत नहीं है।
1: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जा कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करातेंगे आपके रेडियो साथी मनीष।
0: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा,
1: और साथी रहो आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
0: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है, और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
1: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
0: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाना है, बैरू भौजी को तो जमानो ही है वो, काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाते हैगी, और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन पे बातचीत अपन हो कर वो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काई खो बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो, और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को, बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
1: बिल्कुल सही कही आपने, कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियों में भी जाते हैं दोस्तन से मिला थेंगे तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैं, और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दो है गो या कोई को समझा दो है गो, तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे, जैसे लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छो काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने, तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैं कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तब ही अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची है थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे, और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डालबे को जमानो है गो, तो ई पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो, ठीक है जन्मदिन मनो, सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहती पार्टी अच्छी मनी, तो सब जने का कहे फोटो डाल देते ही, और
1: हाँ
0: वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे, जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले। ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: सही बात
0: अब
1: है।
0: मान लो बात चीज हमने देख ली है, तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में क्या चीज चले, एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें,
1: सही
0: जिसे
1: बात है।
0: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनू उपाय कर रहे हैंगे, तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो, ताकि आपकी पोस्ट को देखें, हो सका थे कुछ एक नई उम्मीद मिलवे, नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इके लाने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटत हैंगे, तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना, और इसे अपन और जिंदा हैंगे, अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे, तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो आए अपन को शुद्ध
1: सही बात
0: बिल्कुल
1: है,
0: एकदम। तो
1: बिल्कुल।
0: ऐसे कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही, काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी, कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे,
0: हाँ
1: तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलिथीन।

रोक लगावे के लाने उन भी बहुत अच्छो प्रयास करो है गो। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनत है, लेकिन कछु देर बाद सुनत हैंगे, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैंगे, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: आप मनीष भैया, अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है वो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का, कि भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जरूर नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा निकल गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जात, घुनसारे जल्दी आ जात जो घुनसारे जल्दी आ जात जो लाइट भी चली जात। हाँ हाँ सोते जाने कितने तीनों बैठी रहते ही, अब आन दो रुक जाओ फिर मैं बतात होंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए। ओ कल्लूगा कितने मारेगा, ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे चिज्जित, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कल्लूगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी देखा को, अब घर में कछु नहीं है खा भी, मैं कहाँ करूँ बताओ, मैं कहाँ बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी कर रही है ऐसे।
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बतान लगा।
2: हाँ ओ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताओ कछु नहीं है घर में, आज खावे मैं कहाँ बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे?
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हार था को तू पतो ही है, चाही से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी भरा भी जात।
2: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चूमे परिरत होंगी?
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाए सब।
2: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लाला जी के संगे।
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी?
2: हो तो जात है, आपका रोज के रोज मैं बाद में बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ तुम।
3: बेच भी की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ली थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़ यार बिल्कुल।
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच बेच मिले थे अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक।
2: तुम्हें पैसा नहीं खोर हो रही क्या?
4: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो? कल हुआ कह रहा तो कि मम्मी घुमा रहे पापा, काय मार रहे हो?
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाते तो मूड पे चढ़ाए जाए।
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है कि हम तो तनक जो देखा था कि का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल रहे।
2: लाला जू मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं आती, तो अब लाला जू मैं का करूँ, मैं का बना लो रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल।
3: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़बे को,
2: कब लड़ी मैं बताऊँ कहूँ लड़ी, आज ही तो लड़ी हो
3: कैसे चीपे बता रही, देख लेते हैं
4: शांत हो जाते हैं, काय लगी भज्जा से तनक अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेटा तो जरूरी आदमी अब।
2: हाँ सब रे मुँह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में, तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा हूँ और वो।
2: हाँ वो तो आप सही कह रहे हैं, अब तुम दो जने जुड़ गए होंगे अब मेरे

0: पिछले भी।
1: अरे भौजी ऐसी कछू बात नहीं है, को उसे नहीं मिल रहा जो है कि अब जैसे कोनू आदमी हार थक हुआ तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने और तुम और उल्टी गाड़ी में सुनाने लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
0: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी।
2: हाँ मुझे तो पता है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में।
3: अब तो शांत रहिए, अगर रोई गाई अगर मुझे पता चलगा फिर मैं शाम के बताऊँ तुम्हें।
0: हाँ मुझे काकन ने रोके मुझे सब आराम से मिलत रहे सो मुझे काकन ने चार बातें करके।
3: अब ठीक है लालाजू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
0: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल।
1: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो तना तुम शांत हो जाओ करे भज्जा कहूँ गुस्सा हूँ तो तुम हो जाओ शांत कहूँ बे हो जाओ करे शांत ऐसे चलत घर बार।
0: हाँ तुम हो सो तुम हम ये डॉक्टर लगे होंगे। अब मैं बाजार जा रही थी। हाँ
1: बाजार जाने।
0: हाँ
1: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ तो वो कल पहुँच गया मम्मी को मार रहा पापा है मैं तो ऐसी सुनी सो दोबारा भगत ऐसे रोटी नहीं खा पाई।
0: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले भी जाने लालाजू चलो मैं तुम्हारी संगे।
1: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को धनु कह रही थी वो चून बड़ा गो तो एक बोरी ले आने चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
0: हाँ ठीक है तो फिर चलो फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं चलेंगे अभी तेज तो जाने मंडी का ले लो लालाजी तुम ले लो हम ले लेते तो सब्जी।
1: हाँ भाजी मैं बगल की बापा सेठ की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक
4: मसाले लेने तो तनक
1: वो लेने तो आटो लेने तो
0: ले आओ ले आओ और मैं ला ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी तो क्यों का भाव दई। अच्छा आलू है का भाव दई 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू ले डाल दू।
1: अरे भज्जा जल्दी कर तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे का टेम कर दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे अरे पन्नियन में दे दो तुमसे कितनी डर कही अपन घर से हम हमेशा झूले ले आए पन्नियन में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो ले जो पैसा अपने चलो भौजी ले ले हमने सब्जी
0: का कह रहे लालाजू अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने।
1: अरे लेबगा मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो
0: का लेबगा है।
1: हाँ लेबगा है।
0: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान।
1: अब जो पन्नियन में रख लो कहा में
0: लालाजू मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने और दूसरी अपने जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को ना मैंने समझाई थी तुम्हें।
1: अरे भौजी क्या करूं ख्याल नहीं रहता का तो घर से आता ना और जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
0: जब लालाजू तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कोई कर भी वालो नहीं है बताओ जब तुम ही निकाल को वो नहीं कर रहे। अब मैंने बाद ना भी तुम्हें समझाई थी आज भी कह रही अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से ये बाद में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी मर गई थी वाकई नहीं मर गई थी।
1: जा तो यानी सांची कह रही तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी रास्ते में जब भी आऊँ तो झूला लेके।
0: हाँ तो लालाजू अब चलो चलेंगे तो फिर ब्लैक टाइम होगा कार के मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े सो दिमाग खराब है वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
1: अब तो भाई जी अब जब आज छोड़ते हैं लड़की ना आपते शांत रहिए घर हल्ला ना करिए।
0: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में
1: अगली बार से तो झूला ही ले आऊं मैं।
5: आहा मजे ही आ गया राम धई बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैंगी और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैंगी बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी
6: सही कई कायसे उनने हमें बेरू भौजी के जा नाटक में 3 चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी एगो।
5: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो
6: महिला खो जासन जरूरी है। हाँ। यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे। हाँ। या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग जब तक वे यहाँ
5: बैठे सुबह उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका
6: तो वो
5: आजकल मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे अब भी महिलाएं नहीं रही पहले जैसी कि घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब भी आवे जब ही पैसा खे छुए जब ही हम कछु सामान ले वे। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
6: सही वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है बहुत अच्छे माध्यम है और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती है और साथ में आपसी जो बातचीत होती है बासें अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं। लेकिन अभी भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के बे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक

0: वे घर से ना तो बाहर निकलती हैंगी, और सब्जी की तो बात छोड़ो, वे उनके पास पैसा भी नहीं रहतेंगे बच्चन की पढ़ाई के लाने, अभी वे उन हमारे जो मुखिया रहतेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं। तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैगी।
1: तो देखो हम ही में जा के वो चाहूंगे कि बचत जानी गए सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सब के लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी
0: दूसरी बात हमें जा सीखी कि सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी,
1: बिल्कुल है।
0: और हमारे जो घर पे बहनें बैठी रहती हैंगी तो वे एक काम कर सकती हैं। जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्हों कि
1: हाँ
0: किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकत हैंगी अपने घर में। तो बामे का हो तो एक तो बचत होते हैगी। बचत कैसी बचत होते है? जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैं। तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी। तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा, और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
1: जा तो आपने एनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा लें, धना लगा लें, और का कहते ही
0: भटा
1: भटा, हाँ भटा लगा लें, और मैं वही में एक दो गोभी लगा लूं,
0: हाँ
1: धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे, इतना फायदा दे। फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजिए आप,
0: हाँ
1: ऐसा फायदा के अपन को ताजी सब्जी घरे की मिलेगी, वो बिना केमिकल वाली,
0: बिल्कुल सही
1: काहे के
0: कही।
1: बाजारन में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कतनैया के शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
0: सही बात
1: तो ऐसो अपन को महसूस भी होने लगे है गो। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकत हो।
0: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हैं और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काय से पॉलीथीन को इस्तेमाल करवे से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जान बान को नुकसान है, और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है। तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है वो।
1: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी, काहे के पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढूर बछे जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो वे तो काउ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे के भी गठान तो खोल नहीं सका थेगे।
0: सही बात
1: तो
0: है
1: एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी में कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे, तो एक तो वो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे। तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बच्चे रोज आउ थे वो, और इतना वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो, और जिमें वो डूर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस, वो तो पका है उखो तो खावे की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है, सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है वो जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते, जो दादा परदादा या नाना नानी हते, हमेशा जब भी बाजार जाते तो कहते ल्या बेटा वो थैला दीजिए बाजार हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे ही खाली चले जा रहा है, वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर थेंगे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के, अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए, और अपन को ई के हिसाब से चलने आए, ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले गो।
0: बिल्कुल सही कही वर्षा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी, और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं, कैसे हम हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल से जाबे को, तो उनने का सीखो है गो भी हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
1: साथियों हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
0: और साथी रो आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है गो, तो जरूर शामिल हो हमारे कार्यक्रम में, अपने सुझाव जरूर दे होगे

0: और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं, तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
1: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब काया तुम बात कर रहे अपने साथियों
1: से। नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काहे से हम कामयाब कार्यक्रम जो रथ है गो
0: हाँ, वो तुम्हारा है।
1: नहीं हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे और हमें मतलब जो जानकारी
0: है। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आउ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ये बात को तुम्हें बुरा लगो हुज्जे सो तुम बीच में हमारी बात काटने लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होते है जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछा थे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगा कि कितना बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सा कार्यक्रम लेके आए हैं।
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते है व्यक्तित्व विकास जो रहते है गो यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू दे भी जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा है जी चीजें को सीख वे में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियों में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता के बारे में रहे।
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
0: मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो।
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है उनको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैं।
0: फोन तो उठा लो पहला वो।
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहे फोन हम अपने साथी उनको बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्ते जो सीख मिलत हैगी उनके जो अनुभव रहते हैंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
0: अब वो फोन कटगो आप काय में से उठा रहे
1: हैं। चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैंगी चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
0: तो बात तो हम ही करें आपको ना करेंगे हम।
1: चलो आप ही कर लो भैया रूपा जी को फोन है वो आप ही बात।
0: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते रूपा रानी पुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए है तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे।
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं।

0: वो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या? जी
1: केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था,
0: जी
1: वहाँ पे हमने 1 महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
1: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं।
0: जी तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
1: जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से, उनसे
0: जी
1: हमने संपर्क किया, तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर 1 महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे। हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तो आपने जब अप्लाई किया था, वहां पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे
1: नहीं,
0: नहीं
1: कोई
0: लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हैं, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखने चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए हम मजदूरी करने, घर ही में रहे और बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे और बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना
1: धन्यवाद।
0: चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए है, दिन में 1-2 बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे? अच्छा, आगे
1: बता रहे
0: बढ़ाएंगे
1: थे,
0: जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा। तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें कोई लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए
1: हाँ
0: कपड़े?
1: हाँ तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ, ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
1: नहीं
0: लड़कियां?
1: है, 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया, आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी, सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती है
0: जी,
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी,
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है
0: जी,
1: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं किया अभी, नहीं नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: हाँ वैसे सलवार है जी, है ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा,
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़।
0: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है।
1: हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा। तो बताओ, ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए, आगे यहीं की यहीं रह जाए, सोच
0: जी
1: गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: के लिए बस यही कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा है, बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल
1: तो
0: रूपा
1: ऐसे
0: जी,
1: ही आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे। ठीक है
0: जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: काय बार सा, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया। आपको तो शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ, बस तो
2: भाई हम
0: मतलब
2: सोच ही रहते हम कमे में आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़त है, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़त है। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आगे बढ़ गई हैं, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह, धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कि तुम सुनी कि अरे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते है को, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते। तो
2: बिल्कुल
0: काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो RCET सेंटर चला थे वो उके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घरे जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो। क्या आपने वो 1 महीना या 4 दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरों ब्यूटी पार्लर, तीसरों उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही, अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तो
0: हाँ
2: नक रुक जाओ और हमारे साथी अनखो तनक सांस लेन दो और जो लोक गीत सुनन दो अनखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हेंगे
0: हाँ
2: और
0: मतलब
2: ज्ञान
0: तुम
2: ले
0: तो
2: गए।
0: मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
2: नहीं नहीं
0: तुम
2: नहीं
0: बोला
2: अपन
0: तराओ।
2: एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवा थे अपने श्रोता साथियन को जो नौ नौ सो गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथी रहो फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकते हो, कह गया हम बोला सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं दे
1: साथी अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे जब जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बता देंगे, जो बातें आपको बता देंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
0: बिल्कुल यही तो कह रहे हैं, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ, और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जाना थे
1: नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखो डाउनलोड करो और चाँद जितने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी

0: ज्ञान की बात अनखो सुन सका
1: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने। आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जे शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थे सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सरपंच पर

0: बार पंचायत में हमें बैठ के कराना है।
1: महीने बाद पंचायत में हमें बैठ के करवाना

हम सबको समझाना है, आओ बहनो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनो हम सबको

0: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है,
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत तक, हम सबको मिलकर जाना

0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत की।
0: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
1: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गांव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यक

0: पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
1: चूंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
0: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पर तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जब हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं किस आधार पे कहां पहुंचना है, ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जनाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है, और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे

0: साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्याएं देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में, जो अखबार में नहीं है।

टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

0: दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को बड़े चाह से और मन लगा कर सुनते हैं। और कुछ दिन पहले एक हमारे किसान ने हमसे अनुरोध किया था कि हमारे सभी साथियों को, किसान साथियों को मौसम आधारित जानकारी, चूँकि मौसम आधारित जानकारी तो हम देते हैं, पूरे भारत में क्या स्थिति है, पानी को लेकर क्या मौसम कह रहा है, उसको लेकर जानकारी चाहिए थी। तो हम इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे श्रोता साथियों की पसंद पर इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं। मौसम आधारित जानकारियाँ, क्या तापमान होगा पूरे भारत में, किन किन हिस्सों में क्या तापमान रहेगा, साथ साथ में वायु का जो संकेत है क्या रहेगा, उस पर भी बातचीत होगी। साथ में हमारे किसान साथी इस बरसात के मौसम में, चूँकि बहुत सारे किसान साथी हमारे रह भी गए होंगे और जिन्होंने बुवाई भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पर पानी यानी बरसात होते होते, और हमारे किसान साथी चूँकि बरसात थोड़ी खुलती है इसके बाद मूसलाधार बारिश होती है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी इस मौसम की बुवाई नहीं कर पाई है। लेकिन तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो रबी की फसल की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको वक्त मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, और अच्छी तरीके से उस खेती को करिएगा। जिन साथियों ने इस बार इस मौसम में खुल गया है, और जहाँ पर मिट्टी की अगर बात करें तो जहाँ पर पथरीली दोमट मिट्टी है वहाँ पर किसान साथियों ने मूंगफली और सोयाबीन की फसल लगा दी है, कहीं कहीं किसान साथियों ने अपनी धान की भी रोपाई कर दी है। तो धान में हमारे किसान साथी पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। पानी चूँकि सब्जी की अगर बात करें तो बहुत जगह पर हमारे किसान साथियों की सब्जी बर्बाद हो गई है, और जिन किसान साथियों की अपनी सब्जी की फसल वो लगाए हैं वो पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे हैं। साथ में हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक हम भेज रहे हैं, यानी बनाकर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, क्या भारत का मौसम भारत में कैसा रहेगा, अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा, जानते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: तो ये मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती के साथ जुड़ कुछ जरूरी बातें, लेकिन शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से पांच बड़ी खबरें क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो पूरे राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ी खबर। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो यहां पर भी सावधानी बरतें, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें गुजरात की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर भी यहां संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया है, यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, और हिसाब से ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से हुई पांच आज की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मौसम के साथ कैसे आपको अलर्ट रहना है, यानी देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधानी बरतनी है, कहां आपको चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको कैसे अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी लेंगे अपनी।
2: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बेहद भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज से काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं से नुकसान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अनुरोध है कि सतर्कता बरतें और यथासंभव घरों में ही रहें।

0: अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र कच्छ, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज से काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में मौसम के तीव्र बदलाव से प्रभावित होने की आशंका है, ऐसे में जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति रह सकती है। वहीं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
1: तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर खास कर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो जान लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें, यहां पर भी अनेक जगह के बरसात के संकेत हैं। केरल, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा में कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्व राजस्थान और मराठवाड़ा की, तो यहां पर आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहेंगे कि अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो यानी मैदानी भाग में भी कुछ प्रकार से बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई जगहों पर यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय कर्नाटक की, तो दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बाद मैदानी भाग की अगर करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बरसात दर्ज की गई है। दमन, अधिक कोंकण, गोवा की बात करें तो मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बहुत तेज बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम जुड़ी कई और अहम महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है तापमान पर, यानी तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान के क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, सारी जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान के कुछ और राज्यों की बात कर लें, जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर की बात करें जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 39 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिला है। बात करते हैं हम न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ बात करें हम गुजरात की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान का हर इस प्रकार से देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ, देश का सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।

अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं देश के तमाम मुख्य राज्यों और मुख्य शहरों में जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि लद्दाख में देश के आने वाले लद्दाख के लेह में आने वाले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। रविवार की बात करें कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति में तापमान देखने को मिलेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को फिर से बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें धर्मशाला में तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहां पर एक जैसा मौसम देखने को मिलेगा। चारों दिन यहां पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। पंजाब के अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी उत्तराखंड के गंगोत्री में। इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन कई इलाकों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार की बात करें तो यहां पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं असम के काजीरंगा की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बुधवार को बात करें तो यहां पर कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बनती नजर आएगी। फिलहाल 3 दिन यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। रामेश्वर में मौसम का हाल तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां पर मुन्नार की अगर हम बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा बरसात के साथ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिन बरसात से भरे रहेंगे। मुन्नार में भी इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान यहाँ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें चित्रकूट में अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें हैं उनकी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी में।

भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहाँ तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यही सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जल भराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहीं सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की बेलों को सहारा दें।

0: आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। इस समय की बात करें तो इस समय आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किन प्रकार से आपको आगे बढ़ना है इसकी खेती में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
1: ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और किसान साथियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों के मौसम के बारे में जानकारी को सुना समझा और हमारे किसान साथियों को जानकारी भी हुई है कि किस जगह खास तौर पर पर्यटक स्थल जहां पर हैं उसका भी हमने मौसम आधारित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। अब बुंदेलखंड की बात करें क्योंकि अलग अलग हिस्सों की जानकारी थी, अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की जानकारी थी। अब आपको बुंदेलखंड क्षेत्र और खास तौर पर टीकमगढ़ की जो हमें रिपोर्ट मिलती है, मौसम आधारित जानकारी जो मिलती है उसको हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और तथा कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव की समस्या हो सकती है, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा

रहने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बारिश के समय घर के अंदर ही रहें, यदि संभव हो तो खेतों में जाने से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण ना लें। किसान भाई धान की फसल में खरपतवार निकालने का कार्य शुरू कर दें। इसके पश्चात संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का छिड़काव अवश्य करें। मिर्च और टमाटर की फसल में विषाणु रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई फसल का निरीक्षण करें, ग्रसित पौधे को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है, जिससे पान की फसल में फुट रॉट रोग लग सकता है। इसके बचाव के लिए किसान भाई पान के बरेचा के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। किसान भाई नए फल बाग लगाने के पूर्व में खोदे गए गड्ढों में पौधे की रोपाई का कार्य शुरू कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई कंद सड़न के विरुद्ध फसल की निगरानी का कार्य शुरू कर देवे। किसान भाई बेर की कटाई छटाई का पश्चात इसमें निकलने वाली नई शाखाओं में छल्ला विधि से कलम बांधे। बारिश का पानी पशुशाला में जमा होने ना दें। जानवरों को सूखी जगह पर बांधे। पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें। सप्ताह में 2 बार पानी की टंकी में चूना डालें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गाय व भैंस के छोटे बछड़ों को सूखे स्थान पर बांधे। तो ये थी हमारे आज के मौसम आधारित जानकारी जो हमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी और जो हमने पूरे भारत की आपको मौसम आधारित जानकारियाँ और बहुत सारी जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। उसका हमें सहयोग मिला है TD किसान चैनल से, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली कार्यक्रम में। आज मिले अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से और उनसे जाने कि इनने जब विधा कैसे सीखी और अगर को और आदमी सीख वो चाहे तो ये विधा को कैसे सीखे और जिस सब बातें करें अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से। तो दोस्तों खेमचंद राजपूत जी से मिलवे से पहले अपन सुनते हैं एक बढ़िया सी फाक को और लेते ही फाक को आनंद। जिए गा रहे हैं पंचमलाल फुटीराबाय। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और जब फाक को सुनने के बाद अपन मिले भैया खेमचंद राजपूत जी से।

बर्फी के संग दही की लस्सी बनवाई, खातर हो रही मेहमानन की खिड़कन ढूंकत घर आई। भजिया परसी जब समधी ने संग में दारू मंगवाई, और समधी मोखो

के पूरो सोदन धरो बना के फागुन महीना होरी जाके शादी होंगे के मोरे मन में हति उमंग बेसम चार जने को संग कुर्सी मेजे और पलंग तकी क्या जाने कुंवर छिकाई भाई बकरी में रोरी से लड़काटी को भाई रोरी से लड़काटी को 100 रुपया काड़े समझी ने समझने ने घर में तुमको।

छजार के घोड़ा बांधे परची लई कटारे। एक पहुंचे बैंड बाय नो जाके हमको दे दो बैंड सजा के उसे कह रहे बात जमा के शोभा नानी के बांधी श्याम में नो टंकी शोभा नानी हो बे ढंकी घर बाई ने कई की रंकी कालो पुत में एक जीप तो बउलर का खोलारी में भैया दे हैं सोरा साड़ी चढ़ाए के लाने समन के रही हमले नाक नथनिया महादेव निजा हाथन को चूरा जे हैं और पायल बिछुअन के संग में एक पा चांदी नायनिया को हमने 50,000 को जो बिल बन गौ कह रहे जीजा सारे और तेल लाल कछु

पाई फरासु पाने धर के और बसाता खा लगन और पक्यात की चर्चा मड़वा तरे रे सच के बात भाई चार पहुंचे जब समझी के द्वार खर्चा कह दो साठ हजार सोची नहीं ग्यारह सौ टीका की सियात पांच हजार बेला प्रख्यात समझी खाना तक नहीं का उतरी मुइया पराभाव ने घर जो आए पूछत है जब घर वाई आग लगाओ प्रख्यात ब्याह में हमने रोटी ना खाई में टूटन हो रहा से दुखरा वर कर आई सजना मोरे फिकर करो ना गानों में तो शब्द आई गानों बिगो साव चुके ना गानों बिगो साव चुके ना समझी पड़ गए कारे और दस बीघा पर मन की जान

चंचन लाल फुटेरा बारे सब कहे जो को मांग करे लड़कन की जो को मांग करे लड़कन की उ घर जो को मांग करे लड़कन की उ घर।

जीगर बिटियां जला देते हैं ऊ झूले पे जल गो ना। पंचम लाल खेरा गाछ रूके सबको करत इशारे ओ मांगना मांगो तुम लड़का।

हाँ देखो दोस्तों, जो अपन सब जन ने फाक सुनी और इफाक को आनंद लव है। अब दोस्तों इनकी इफाक के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और मिलते हैं भैया खेमचंद्र जी से। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दी।

0: देखो लगन कब से लगी, क्या साल कहते जब आप?
1: हम हमारी लगन थी हम सेम हमें विशेष के हो इतिक जानन लगे थे कि जो जा चीज है जा चीज है और गावो कैसे हो। करीबन हम 10 साल के भय थे और हम गावो संग हमारे पिताजी जाते, हमारे सबसे पहले पिताजी जाते।
0: अच्छा पिताजी गाँव थे आपके?
1: हमारे पिताजी गाते तो हारमोनियम बजाते बाजो
0: पिताजी,
1: तो हम जाते उनके संगे पिताजी के संगे। तो हम देखते के हमारे पिताजी गा रहे ऐसे बेगाते तो हम ले लेते।
0: अच्छा
1: और बेगाते तो हम ऐसो बैठत रहे बैठत रहे। अब एक दार की बात है, हमारे गांव की पार्टी बहुत अच्छी हती वह भी चल रही। तो गांव के ने सोची हमारे दादा गाते थे तो इतराजी होती गाँव के नो कितना अच्छा गा रहा
0: हूँ
1: और अच्छा नहीं गा रहा रह रह जात। अब जैसे तुम भी जानते के बूढ़ो आदमी हुए
0: तो मतलब उसको गाते ही है
1: तो वैसे
0: सही है। हाँ।
1: तो हमें फिर ऐसी सोचा लगे सो एक हमारा दोस्त है बहुत अच्छा।
0: हाँ। का नाम दोस्त को?
1: गब्बर सिंह गब्बर सिंह नाम है।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा खासा दोस्त है।
0: हाँ।
1: तो उसने हमें बताया कि खेमू एक काम करिए।
0: हाँ।
1: कि तुम्हारे दादा की बहुत हूटिंग करत आदमी
0: आदमी
1: आदमी हमने की कैसे बोले तना कैसे गावे में हिचक जाता
0: ना।
1: हमने की ठीक है गान दो। तो हम सोचत रहे कुछ दिन।
0: हाँ।
1: तो हमने एक वंदना करी।
0: अच्छा अच्छा वंदना तुमने सीखी फिर?
1: हमने पहले वंदना ये देवी जी की वंदना ये कैस्ट में सुनी हमने।
0: अच्छा सुनी पहले
1: कैस्ट सुनी फिर कैस्ट सुन के हमने गाई।
0: हाँ।
1: तो गावे के बाद एक जगह हम गए
0: ऐसे
1: ही प्रोग्राम में हम चले गए।
0: हाँ।
1: हमें लोहानी गए हम चले गए दो।
0: अच्छा तुम्हें एक बार लगन हती?
1: हमें लगन हती दो चले गए।
0: हाँ।
1: हमें बिकड़ गए।
0: हाँ।
1: हमें जान दो।
0: हाँ।
1: हम पिछाई पहुंच गए।
0: हाँ।
1: अब इनने मंडली मल्लू गान लगी थी
0: लगे।
1: हम बैठ गए।
0: हाँ।
1: तो हमारे जो दोस्त है उनने हमसे कही गावे में हमें देख सुना कहते के को गावे।
0: हाँ।
1: हमें जा रहती के कबे जो बंद हो
0: कबे हम अपनो गाव।
1: हाँ। तो हमने वंदना सुनाई।
0: हाँ। तो बंदना कैसी हती
1: वंदना हती।
0: हाँ।

हे माँ पूजा न जानू अर्चन न जानू पूजा न जानू

0: तुझी माराना, ये हमने गाया। तो हमारा एक जो ढोलक मास्टर था, उसने ढोलक इतनी गजब की बजाई, तो आदमियों ने जो हमारे लोग बाग थे सुनने जा सोची। तो दो तीन दिन बाद हमारे पिताजी को नीलवा गए, नीलवा गए। तो हमने की नीलवा जान दो, अब तो हम जा रहे हैं। हमने अपने पिताजी से कही तुम बंद करो, हमारे पिताजी बजाते बाजो, बाजो बजाते। तो जब जैसे बाजो बजा रहे, तो जब तक बाजो ना बजे तो गीत ना हो जाए। तो कुछ दिन फिर हम गाने लगे, तो हमारे पिताजी अब मान लो
1: नहीं जाते,
0: अब नहीं याद, अब इसलिए नहीं याद कि अब बेबी सोचा कि अब हमारा लड़का भी गाने लगा। अब तो कहीं अगर जरूरी है तो हम अपने पिताजी को भी लो आ जाते। हमारा हमने खुद अपना स्वयं दुर्गा मंडल नाम से
1: मंडल खोला। अच्छा, आपने दुर्गा नाम से अपना मंडल खोलो, आपने गुरु किया मानो तो?
0: हमारे गुरु हैं, एक गांव के हैं। हाँ। हमारा दयाराम राजपूत है।
1: हाँ।
0: हमारा गुरु भी यही है,
1: दयाराम राजपूत
0: हमारे गुरु हैं।
1: अच्छा,
0: पूज्य गुरु हैं। हमने उन्हीं के गीत गाए हैं, अभी तक गाते चले आ रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: चलो बढ़िया बात है कि आपने देखो गुरु बनाओ, और बिना गुरु के तो
0: देखो बिना गुरु की तो ये कहानी होती नहीं है। अगर अपन कुछ भी गाना बजाना है तो गैर गुरु का तो अपन को
1: ज्ञान मिला ही नहीं सकता।
0: गुरु बिन ज्ञान
1: है।
0: एक कहावत है कि सुर बिन मिले ना सरस्वती, और गुरु बिन मिले ना ज्ञान, और ज्ञान बिना हैरान हूँ से ढूंढत वेद पुराण।
1: देखो कितनी बढ़िया बात है।
0: अगर अपन अपने पास गुरु है तो सबसे बड़ा

0: ज्ञान है, और गुरु नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं,
1: तो कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा जा, तो आपने देखो गुरु जी की बात बता दी। अब एक संगे संगे आपने जो गीत गाव है ताराग्राम पे गाओ एक आदमी,
0: हम ताराग्राम में दो दफे गाया है,
1: गाया
0: है। हाँ, हाँ। तो हमने सब में पहले ताराग्राम में गाया था।
1: हाँ।
0: जो हम दर्शन खो आए केवरिया मैया खोल दो, वो फुलवारी से फुलवा।

0: हमने ये गाया।
1: अच्छा, जय गीत गाया था आपने। देखो बहुत अच्छी बात है कि आपने जय गीत का। अच्छा एक बात और बताओ, इमें जो गावे बजावे में कोई विधा की बात आउत, अगर विधा की, तो आपको जो पता है कि अपने साल में 12 महीना हो, और 12 महीना में 12 प्रकार की अलग अलग विधाएं गाई जाती है।
0: जैसे अपना ये है, जैसे अभी मौसम ये फागुन का है, ये महीना फागुन का है, तो इस समय पे अपन को फाग अच्छी लगे।
1: अच्छा, मतलब ये मौसम में फाग ही, तो
0: जैसे अपन ने कही, जैसे अब ये चल रही है, जैसे ये अपन गावन गावन होती हैं, ये कौन ये उनने कही के ये फलाने की आज घरे फागे होने, तो उनने कही बोला गुआ दिया फागे हो जाए फलाने की, तो ये फाग, जैसे अपन फाग हो तो चेतावनी हो,
1: फाग चेतावनी
0: चेतावनी, जैसे अपन ने चेतावनी गाई के उड़ गई सांच रज्जा देखी कौन ने, उड़तन सांच रज्जा, उड़तन सांच रज्जा देखी कौन ने, सो हमें बता दो भज्जा, वो गांव पुरा के सब बैठे रहे परखत रहे परखज्जा देखी कौन ने, करतन सांच रज्जा। अपन को जो पतो नहीं है कि घट में से कबे
1: कड़ गई
0: सांच अपनी कड़ गई,
1: सही कह रहे,
0: गाँव पुरा के सब बैठे रहे सो परखत रहे परखज्जा, वो कड़ गई श्वास मिलो ना यार, वो देखत रहे देखज्जा देखी कौन ने, कड़तन श्वास से रज्जा,
1: सही कह रहे।
0: गाँव पुरा के सब बैठे रहे, क्या दिखा रही,
1: काऊ ने नहीं देख पाई,
0: वाह काऊ ने नहीं देखी, अपन अपन ने खुद नहीं देख पाई के कबे का होने, सो बा ऐसी चेतावनी हमने ये, जैसे अपन ने घर बैठे हैं, तो ये फाग है, जैसे फागुन का महीना है तो फाग अच्छी लगे,
1: तो
0: सावन का महीना है तो जैसे सावन भरे ये गीत है, ये झूला गीत है, तो जैसे मौसम है बाहर गाओ, तो बस जैसे अब जैसे फागुन चल रहा हो तुम झूला गीत गा दो, तो वह साझो लगेगा, फागुन में फाग ही लगे और सावन में झूला गीत साझे लगे, जैसे नौ दुर्गा है तो देवी भजन
1: अच्छे लगे,
0: अच्छे लगे,
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखो जो, तो अगर एक बात और बताओ कि जैसे नए अपने युवा साथी हैं, अगर वे ई राग को सीख बचाए, जो विधाएं सीख बचाए, तो उन्हें कैसे सीख पाएंगे?
0: ऐसे ही सीख पाए, जैसे हमने जो आपसे कहा है कि जैसे हमें बहुत अच्छी लगन लगन थी, अब जैसे अगर अपने पास लगन है कौन सी भी चीज की, तो अपन वह चीज को कर लें, अपन अपन लगन ना लगाए वह चीज को तो अपन नहीं कर सकते। क्या हमें गावे बजावे की लगन थी, आज हम हमें चार आदमी
1: सही है सीख गए, आप
0: सीख गए, चार आदमी बुला रहे,
1: इज्जत भी बढ़ा,
0: इज्जत है,
1: सम्मान मिला,
0: अब सम्मान है, जैसे हम अपना यही काम है, कौन सा भी काम है, तो अगर हम घर भी बैठे अगर खबर आ गई कि फलानी जगह जाने हैं, तो हम चले गए, पहले चले गए, तो अब जानन लगे आदमी कि फलाने गांव में फलानो आदमी है, उसको खबर दे दो या चिट्ठी दे दो या फोन कर दो, तो हम एक दिन नहीं बैठे रह रहे, हमें इस लगन से बहुत अच्छा है, एक दिन भी बैठे नहीं रह रहे, कुछ ना कुछ हमें कार्यक्रम मिलते रहते हैं।
1: तो देखो जो अगर सीख वो चाहे तो उसको पहला तो लगन लगाने पड़े,
0: अपने पास अगर लगन है तो सीख सकते, लगन नहीं है तो नहीं सीख सकते, कौन भी काम है। अच्छा। अगर अपन घर बैठे, अपन जैसे इतने बैठे फालतू घरे बैठ गए, तो घरे बैठे ही नहीं,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: अगर अपन दिमाग से कुछ सोचे तो कुछ कर ले, अगर सोचे ही ना तो कुछ नहीं कर पाओगे,
1: बिल्कुल।
0: सबसे मेन चीज ये है, अगर अपने पास लगन है तो सबसे उत्तम है, और लगन नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे पास लगन थी, हमने गाना बजाना सीखा है,
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा तो अब जाते देखो अपनी बात हो गई। अच्छा चलत चलत आप और जो अपने अपन को जब बात अपनी सुन रहे, उनसे अपन चलत चलत का संदेश दे बचा।

0: संदेश जो ही है कि भैया जैसो हम लगन लगा रहे ऐसी सब जन ही लगाए, बहुत अच्छी बात रहे। जैसे हम एक शेर कह रहे
1: हैं, हाँ, बिल्कुल,
0: सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूले से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। क्यों? कि अगर अपन में सच्चाई है, हर चीज है, दिमाग है, तो अपन हर चीज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: सैर करने में चला,
1: हाँ।
0: कुछ हमारे दिल में अरमान थे,
1: हाँ।
0: और एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा,
1: हाँ।
0: उसके कुछ बयान थे,
1: हाँ।
0: और चलने वाले, हाँ। संभल के चलो,
1: हाँ।
0: हम भी कभी इंसान थे।
1: बहुत अच्छी बात, अच्छा, नहीं सही बात।
0: अगर
1: हाँ।
0: अपने पास क्षमता है तो हर चीज कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते।
1: चलो जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब एक संगत देखो, अपनी बातचीत बिलात हो गई, और अगर आपको कोनो जो सबसे अच्छो आपको गीत अभी तक लगो हो कि हमने अपने जीवन में जो अच्छो गीत अच्छो आओ तो जो आपको पसंद हो, वो कितने के कादो लाने हैं का?
0: हमारे पास तो अब लेने तो ऐसी है, हमने तो हमने आपको बताया है,
1: हाँ।
0: कि हमारे दादा गाते थे,
1: हुँ।
0: सबसे अच्छा हमने अपने दादा का सीखा था।
1: अच्छा, क्या सीखा था?
0: हमने
1: वो अभी आपको याद है?
0: हमें याद है,
1: हाँ।
0: बहुत दिन पहले सीखा था।
1: अच्छा।
0: जब हम शुरू में,
1: हाँ।
0: गावो सीख ही रहे थे,
1: अच्छा, सीख रहे
0: तो
1: थे।
0: हमारे दादा गा रहे थे।
1: अच्छा, का गाओ
0: तो हमारे दादा ने गाओ तो एक जो गीत जो चित्रकूट धाम,
1: हाँ।
0: है अपना राम राजा के,
1: हाँ।
0: माध्यम से ऐसे ही सुनाओ तो उनने,
1: हाँ।
0: तो हम सुनत रहे, तो हमने सीख लाओ,
1: हाँ।
0: तो वो है

0: क्या है भाई साहब,
1: हाँ
0: ये साजबाज में बजट बहुत
1: यहाँ
0: अच्छा
1: बहुत
0: गीत
1: अच्छे
0: लगा,
1: मजे
0: जो
1: से बहुत
0: जो
1: अच्छे
0: हमने गाया था एक
1: चल रहे।
0: जगह,
1: हाँ
0: तो गाया था जब
1: हाँ
0: साजबाज में हमने गाया था,
1: हाँ
0: तो हमारी लोग बागों ने बहुत अच्छी
1: तारीफ की।
0: तारीफ की, तो हमको घर लुआ गए,
1: ओ
0: और घर लुआ के हमको भोजन कराए, बहुत अच्छी
1: सम्मान में लो पहले
0: सम्मान
1: तो।
0: मिलो हमको।
1: हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपने भैया इतना कीमती समय निकाल के हमें दो एक खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ तो देखो दोस्तों, जी तो होते भैया खेमचंद्र जी, जिनने बताओ है अपन को कि हमने कौन प्रकार से जो गाबो बजाबो सीखो है, और अगर कोई सीख बचा है तो वो की प्रकार से सीख सकत। अब दोस्तों एक के संगे संगे आप उन्हें कह रही हो कि माता दीन भैया बला देर से खेमचंद भैया से बातें करवा रहे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, आपके लाने मनोरंजन को हमें ध्यान है, तो आओ मनोरंजन के लाने सुनाते अपन एक बढ़िया सी फाखो, लेते हैं फाखो आनंद। जी फाखो गा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
3: अरे धनुष उठा ले कर मैं रामा, धनुष उठा ले कर।

लखन दोई। हाँ देखो दोस्तों, जा कितनी प्यारी फाग अपन सब जन ने सुनी, फाग को आनंद लो है। ई फाग को गा रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों यही फाग के संगे संगे हम आप सब जन को बता देवे कि आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति और चलत चलत आप लिख लो हमारे फोन नंबर को और हमारे पते को, जिससे कि आप ई पते पे और फोन नंबर पे हमें ई कार्यक्रम की राय सुझाव हम तक पहुँचा सको। सो दोस्तों हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो ई पते पे आप चिट्ठी पत्र द्वारा हमें कार्यक्रम की राय सुझाव जरूर भेजें। अब लिख लो आप हमारे फोन नंबर को, हमारा फोन नंबर है 94-25-14-17-26। सो ई फोन नंबर पे फोन लगा के आप हमें कार्यक्रम की राय सुझाव जरूर भेजें। आपके फोन को हमें इंतजार है। अब अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में ए बिरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं कर

0: दिलों का बीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
1: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवाब सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना।

उसने भगवान हनुमान ने आई थी, भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले

0: देखें आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी।

0: वो बेटी की आत्मा कहती है अपनी माँ से और बाप से, क्या कहती है?
1: कि ए कुमा तू चमन और मैं उसकी

लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

भजन कौ सिया रघुबर के रे, सिया रघुबर

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, नेक कठे आँखें बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, बहुत ही से वैसे तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके अभी आई थी कि नेक तुम मे संगे चलू।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू नेक।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे ते हारे कि हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लू, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: का कह रहा लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भौजी के, ऐसी क्या बात है, तो ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मुझे का को तो अच्छी सी बता दू, नेक मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मैं जो दवाई ले आऊंगी, लेकिन इनसे का को मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा नाम के
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी, एक बात है।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, तुम्हारी कैसी हैगी?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी,
0: ये दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: हाँ तो देख भौजी, देख जा बीबी आप आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी जी, रासायनिक दवाई जे ही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तई, पढ़ भी जाने तो खेती भी करनी है संगे संगे। देखो अब किसानी को गाँव गाड़ों को काम है तो सब करने आप
0: कही। हाँ वो तो यह नहीं है कि लालाजी, मैं जा के रही तुम कहाँ डाला दिन में, देखो तुझे भटन में कैसो कीरा मीरा सो लग रहा है वो, और काकोती यानी रुखन में आने से लग रहा है, कहाँ डाला तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम आई अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, मैं तो बाजार से लिया था ही का, तुम जाने का करा था मून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजी, तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वास आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा होते का पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आते।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से खींच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत तो
1: बाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी तो ऐसी बात कर रही हो जैसे अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ, वहाँ में कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही भौजी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही? मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही घर बना दवाई बना वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते रासायनिक दवाई, जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: ना ये कहो कीड़ा ला, वो कीड़ा के लाने और जाना वो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा तो अब तो चला ही नहीं आए तो हार।
0: चलो देखो अब देखो लालाजू, जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों में देख भी लाखेगी।
0: क्या कह रहे भौजी, तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लालाजू, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जे, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी, मैं तो घर बनाता अपनी सब।
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: क्या कह रहे लालाजू, टपक जा में लोटा धरे?
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बट टपक जा में।
0: हाओ लालाजी, मैं मटकन से मैं मटका खाद बनात हूँ।
1: मटका खाद?
0: हाओ
1: वह कैसी बना?
0: ले लालाजी, तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डालत हूँ उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: और मैंने पढ़ा तो है ना, तो किताबन में मटका खादो जी सब जैविक खादे बने।
2: अच्छा,
1: लेकिन तो मैंने जसू जी नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सका थे। तो लाला जू अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने, उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तूने जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
0: बिल्कुल, तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी खिलाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरो भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरो भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरो भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी, उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी। कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गया, उड़द हो गए, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
5: हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
5: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
6: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
6: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जब भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है, मतलब गोबर खाद, जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
6: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है फिर।
1: अच्छा, जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
6: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला
1: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
6: मतलब ऐसे है की जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
1: अच्छा
6: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकड़ाई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई।
7: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
7: हमें पता नहीं है,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
7: नहीं है जानकारी।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
7: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।

ओ माला माल कर दे तीजा जैब के खेती, माला माल कर दे तीजा जैब के खेती।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विषय विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो स्थायी कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से। आप देखिए, ये पद्धति का सेट है तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
3: जी, इसके अनेक लाभ हैं, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
0: जी,
3: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
0: जी,
3: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
2: होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा, और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी,
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा, और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
5: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को, और साथियों अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों, और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
4: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207949। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल, और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है, और श्रोताओं पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है, तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
4: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
6: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक मतलब स्क्रिप्ट लेखक, जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं। इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम में, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के, बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पर जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है।

0: विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं आप एनिमेशन की सहायता करके भी। तो एनिमेशन मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहाँ पर आप जो है अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं।
1: बिल्कुल
0: अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है,
1: जी
0: उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो,
1: जी
0: हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो,
1: जी
0: मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। सो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खास तौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से
0: मैं
1: थोड़ा
0: आपकी
1: बताइए।
0: पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है।
1: जी
0: मैं इस बात पर आने ही वाला था।
1: जी
0: हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन MCU.AC.IN वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है,
1: जी
0: हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है। जो और इसी तरीके से हमारा MCU दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम UG पाठ्यक्रम कहते हैं, वो NEP आधारित 4 वर्षीय हमारे UG पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास BA जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही BBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास BA जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम BA JCW कहते हैं। इसके बाद हमारे पास BA इन मीडिया रिसर्च है, BA इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, BSc फिल्म प्रोडक्शन है, BSc मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, BSc एनिमेशन में हमारे पास BA मास कम्युनिकेशन है, BA इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने BA हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि NEP में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में
1: जी
0: भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी,
1: जी
0: हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास UG हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए MA प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, MA इन डिजिटल जर्नलिज्म है, MA इन प्रिंट जर्नलिज्म है, MSc मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा MSc इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास MBA इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम MBA भी ऑफर करते हैं, MA इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, MSc फिल्म प्रोडक्शन है, MA मास कम्युनिकेशन है, हम लोग MLA और BLIP पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम

0: लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं। और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे,
1: बिल्कुल
0: और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं।
1: जी
0: तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री, उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में
1: जी
0: आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस
1: बिल्कुल
0: मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को,
1: जी
0: वर्ड्स को, क्योंकि ये कानों का माध्यम है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीक चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको
1: बिल्कुल सर
0: दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है। जो
1: बिल्कुल सर
0: प्रिंट माध्यम है, रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है,
1: जी सर
0: तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है,
1: बिल्कुल सर
0: इसमें कोई भी अंतर्वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो
1: बिल्कुल
0: अपने
1: सर
0: ऑफिस में, यात्रा के दौरान,
1: जी
0: कार चलाते हुए,
1: जी
0: अपने दफ्तर में, इवन
1: जी
0: गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई
1: बिल्कुल सर
0: रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो
1: बिल्कुल
0: प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो
1: जी
0: माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित
1: जी
0: करने
1: सर
0: में आपने मुझे आमंत्रित किया,
1: जी
0: उसके लिए
1: सर
0: आभारी हूँ,
1: जी
0: और उन
1: सर
0: सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है हम जानते हैं सर, इसमें से भी 2 प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये सर।
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो
1: जी
0: उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला
1: जी
0: चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, बिन्नू
1: प्रतिभा है
0: रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है,
1: जी
0: तो
1: सर
0: उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके
1: बिल्कुल सर
0: और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो
1: बिल्कुल
0: हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है,
1: जी
0: अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान

0: में सहयोग से यदि बहुत
1: बिल्कुल
0: सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते
1: बिल्कुल
0: का,
1: सर
0: 15 दिन का, जैसा भी
1: बिल्कुल
0: आप उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर
0: और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम
1: जी सर
0: उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर
0: पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं,
1: बिल्कुल
0: और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूँ चाहो कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें,
1: बिल्कुल
0: यही
1: सर
0: बात के साथ। जय राम, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी हतो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेहोर ने देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राधापुर।
1: राधापुर में रहती हूँ। क्या करती है अम्मा आप?
0: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
1: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
0: हम कर रहे 20 साल से।
1: 20 साल से?
0: हाँ 20 साल से कर।
1: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं वो?
0: हम मायको झांसी में है।
1: झांसी में कौन जगह?
0: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
1: हाँ, हाँ,
0: उन्हीं के नीचे रहते थे।
1: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में को है? तो
0: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
1: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
0: मम्मी पापा थे।
1: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
0: हुआ? पे वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब के थे। जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
1: हाँ, सही बात।
0: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
1: अच्छा, 10 रुपया?
0: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
1: अच्छा,
0: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपया दे देती महीना भर।
1: तो मतलब इस तरफ से, इस तरह से चलत रहते
0: हैं।
1: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने? पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
0: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
1: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
0: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
1: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
0: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता रहा।
1: हाँ, तो कोई खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
0: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस यही खेल खेलते थे। और क्या?
1: अच्छा,
0: चपट्टा खेल रहा है।
1: चपट्टा का
0: साउंड को मुझे चपेटा कलर।
1: अच्छा,
0: जी खेल रहे।
1: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत, एक आध गीत सुनाओ।
0: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
1: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
0: नहीं,
1: पहले तो गा सुनियो आप।
0: अब मैं भूल गया, तो बुढ़ापो ऐसे कछु नहीं आता।
1: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल पूरे, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
0: नहीं, बुढ़ापो का नहीं है।
1: तो कौन सा गीत गाती है?
0: कोनो नहीं गाते हैं।
1: आप गाते नहीं? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
0: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को अब जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके। कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो गई, अपने अपने घर चली गई सब।
1: अब मिलती हूँ आप लोग?
0: हाँ, मिल जाते
1: कभी
0: कभी, इकट्ठे हो जाता खुशी। तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता।
1: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे? मतलब पैरत का कहा, कपड़ा कौन कौन से चलते?
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी हती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आकर नहीं मिली तो बिस्कुटें पहन लेते।
1: हाँ,
0: ये पहन लेते और हम तुमने फिर आके दे रही तो वे पहन लेंगे और ये ही पहन रहा।
1: अच्छा जी, मतलब कोनो अलग से नहीं है?
0: कोनो अलग से नहीं है। तो
1: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में
0: हुई? हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई थी।
1: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
1: बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखा तो?
0: हाँ,
1: पहले से देखा तो?
0: हाँ, नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते।
1: हाँ,
0: पहले ना को मोड़ी देखा तो ना को मोड़ा देखा।
1: अच्छा,
0: देख से तो आते ही हमारे बाप माता 8-9 साल के साथ, हम 9 साल के,
1: 9 साल के
0: हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
1: अच्छा,
0: तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने। बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका।
1: सही बात,
0: उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया भरने में दाए थे।
1: अच्छा,
0: तो वही बताई नहीं होते कहीं में करता।
1: 500 रुपया में ब्याह होगा?
0: नहीं, सबसे जैसे
1: अच्छा।
0: कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे, उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही से वहाँ ब्याह होगा।
1: अच्छा, जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल से? नहीं, राधापुर में भाई है
0: ना? हाँ, राधापुर
1: में ससुराल हैगी आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी? जैसे पहले दिन तेल मंडप,
0: पहले पहले मंडप तेल भाव, फिर मंडप भाव, फिर टीका।
1: अच्छा, 3 दिन को ब्याह हो तो?
0: हाँ, 3 दिन को हो
1: तो बारात 3 दिन।

0: नहीं एक ही दिन नहीं तीन दिन मिली रही थी बरा
1: तिल वाले दिन आ जाती
0: नहीं ले आते टीका के दिन
1: अच्छा।
0: और फिर भावर मावर बरतती पर वो दिन थोड़ी जाती बरा दूसरे दिन जाती
1: दूसरे दिन जाती तो जब जयमाला डरी तो आपकी
0: जयमाला नहीं डरी
1: कैसा हुआ तो पहले
0: भी हम आज जयमाला नहीं डरी मैं हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ अरे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा
1: अच्छा।
0: और जो तुम जो होट बल्लाल बाको ब्लाउज चावल मार दे
1: अच्छा चावल जी का घाले जाता आपको कुछ बताओ
0: नहीं बता हमें नहीं बता
1: अच्छा चावल को कुछ बता ही नहीं
0: तो मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
1: भावरे काका चढ़ा दो आपको
0: हमें पैसे ना चढ़ी थी एक किलो के वो खम वज्जा एक किलो के प्याज ना हाँ। खम वज्जा
1: वो
0: जो इतने पैर थे पहने थे
1: बाजूबंद
0: हाँ,
1: हाँ।
0: बेचड़े थे
1: अच्छा
0: तो अब रखे हाँ बहन की बात
1: छे
0: लड़का होगा छे लड़का के ब्याह कर ले
1: अच्छा
0: से आ रहा
1: सही बात है अच्छा आपकी विदा का है वही दी
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
1: हाँ।
0: भाई में भाई थी
1: बेटा
0: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में
0: बेदा होके हमारी गाड़ गई से
1: अच्छा बैलगाड़ी कैसा लगा
0: हुआ
1: तो आपको बेदा हो रही आपकी बैलगाड़ी से
0: बैलगाड़ी गाड़ी से होती पहले बेदा सवाई की होती हमारी का
1: अच्छा।
0: पहले वाहन कहाँ थे ओरछा तक निगज जाते खेलार तक निगज जाते अब तो एक कदम नहीं निगरा वो आदमी
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
0: अगर तुम्हें कारस देव नो जाना तो गाड़ी
1: से जाना सही बात है तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में खूब मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी
1: अच्छा आपके में नंबर की है
0: हम दूसरे नंबर के नानी ले दो
1: नंदन की शादी हुई शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: अच्छा तो फिर आपके एते का करस ने भाई मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: तो आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो आप
0: द्वारे में और डरवा दे
1: अच्छा
0: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे
1: नहीं हो रहा
0: पहले देता ही हते अबे भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनो तो चूल्हे नो रखवा सास बहू से सास लेते हुए पैसा चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ रख दे लेकिन वो सास ले ओरेंदार तो ओरेन पे रखत बहु
1: अच्छा,
0: तो बेबी सास ले
1: अच्छा ये
0: जी की सास ना हो तो जेठानी ले
1: तो जैसे पहले एक अबे एक रसम होते जुड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलते
0: नहीं हमारे समय में नहीं खुलते जुड़ा नहीं
1: खुलते नहीं। अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खुलते जो छोड़ा
1: तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: महत्व कछु महत्व
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: ना छोटे आते से कछु दे आते
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का एक होती
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं भाई जेठानी
1: सास से
0: ना सास से भाई कब होना
1: काय नहीं होती आप सीधी आती के दो जने
0: दो ही एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा
1: अच्छा और इतने सासरी में का काम होती है खेती
0: इतने खेती होती रात से खेती होती
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से
1: कितने बजे उठाती
0: आप चार बजे उठ जाते चार बजे से पी सकते सो पाँच छह किलो नाच पीस लेते
1: पाँच छह किलो रोज पीस
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी

0: सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो?
1: चार बजे से भी पी सकती
0: संगे पी सकती हूँ
1: ना, कबू संगे कबू अलग अलग पी सकती।
0: अच्छा, फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद का काम?
1: फिर गोबर मोबर डाल रखते।
0: कितने गाय भैंसे होती है आपके?
1: पहला 10-12 गैया होती, गोबर मोबर डाल रखते, झाड़ा झूरी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
1: फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, रात चलाते दिन भर।
0: अच्छा, वो हाथ से बहाने आते
1: नहीं, बेलन से
0: चलते
1: नहीं आती लोहे, सब वही चलाते रहते। कब हम साथ जेठानी चलाती, कब हम चलाते रहते,
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी? नहीं। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
1: हमारा 6 लड़का।
0: 6 लड़का और लड़की?
1: लड़की नहीं है एक।
0: लड़की नहीं है एक। तो आपने लड़का को तो पढ़ाओ जो हुए?
1: हाँ, काहे को पढ़ा, मैं परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
0: अच्छा,
1: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
0: अच्छा, सरकारी। हाँ। स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुई?
1: हाँ, सबकी हुई, सब सब नाती ने तुलन की हुई।
0: अच्छा, नातीन की भी हुई? कितनी नाती है?
1: 6 नाती है, 6 नातने हैं।
0: मतलब बड़ा परिवार है।
1: हाँ, तो 6 लड़का है, तो 2-2 है सबके।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और 1 के 4 है बड़े के, 3 मोड़ी है, तो एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए, मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, 1 के छोटी, 1 के मोड़ा होगा, 1 के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
0: बहुत बड़ा परिवार है, आपको अच्छा लगा थी। हाँ,
1: तीती हाँ,
0: भाई और सब जने आ जाते हैं, तो
1: अच्छा
0: लगा
1: थी,
0: है ना?
1: हाँ।
0: तो आप सुबह नहीं खेलती
1: हो? कैसे खेलती आप? अपने सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो, बस फिर खेल
0: भूल गई, भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
0: कैसे लग गई थी मतलब?
1: पहले उनने इन्हें 4 जनन के कागज दी थी भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते, तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
0: हाँ।
1: हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकत।
0: हाँ,
1: 350 में लगते हमें 200 रुपया।
0: धीरे धीरे करके
1: तो फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे, वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के लाने बजे का कर। इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको, तो फिर लगे रहे इनके, तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो हमने, बना तो नहीं अभी।
0: अच्छा।
1: जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब ही से पानी भर हुए इनको।
0: अच्छा।
1: मतलब खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जी दे तो सकते खावे, और नहीं करते तो को दे रहो।
0: सही बात है,
1: दे रहो तो को भी ना करो।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
1: अब 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 में
0: रहते,
1: फिर 350 है हमारे, फिर 1500
0: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा, बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी हो, आंगनबाड़ी कर ली, फिर से जाकर
0: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
1: पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहा पढ़ा लिख रहे हैं।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए?
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
1: है, ड्रेस मिल रही, लेकिन अब मिल रही पहले कहाँ मिला?
0: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही, तो अभी के लाने पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से,
1: और का कहना
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी, नातने नाती पढ़े,
0: पढ़ा चाहिए।
1: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो, को हुआ बड़ी बड़ी हो गई, सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो, ब्याह पढ़ दे ना तो धन की,
0: बहुत बढ़िया
1: आप तुम को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहे की।
0: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप और सुनबो चाहते हैं, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ा

0: है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और ख़ास तौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीज़ें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफ़ी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल। तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उस पर काफ़ी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉर एवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट पे बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग इम्पोर्ट रिलायंस।
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
1: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं और ये हम उगा रहे हैं इस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और उसके बाद उससे

0: नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, दे आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियाँ वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपन्स, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंट्री लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं। तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितने दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफ़ी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट हैं क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पे भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्रीवेस से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रही हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बियर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसी कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्रीवेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए

0: वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं, जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं। बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है। हम एग्रीकल्चर वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम इस इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उस पर हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफ़ी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नज़र आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी।
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं, जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है। जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं, तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया, जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी, उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है, कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा, या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उससे भी अलाइंड हैं। 12 हमारा मेजर गोल है, विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल्स से अलाइंड हैं। लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी ये जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहाँ तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी।
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में एक रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वियर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं। जैसे फैब्रिक हमारा, फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नज़र आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे।
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियली बेनिफिट के तौर पे हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ

0: जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहाँ पे सभी थ्राइव कर रहे हों साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको ने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल। हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी।
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,
0: वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीतें, वो इवन ग्रांट्स देती हैं, अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं, हमें काफ़ी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटेड हैं अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है, ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है, उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज़्यादा सहायता मिल रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी। तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज़्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज़ मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले, तो हम और भी चीज़ों कनेक्ट करने की

0: कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में। अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही हैं भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहाँ कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इस सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच के कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और विजन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूँकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फ़ोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुनते हैं अपन विधा चेतावनी को और इन चेतावनियों को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। तो दोस्तों, आओ देर न करत भाई अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं इन भैया की गाई भाई चेतावनी को। ये गा रहे हैं राजू कुशवाहा जी।
1: के करत कर

0: बिल्कुल दोस्तों, कि करत करत कड़ गई जिंद गानी के माया किताऊ धरी ना दिखानी। देखो दोस्तों, जा कितनी प्यारी चेतावनी अपन सब जनन ने सुनी है, इस चेतावनी को आनंद लव है। इस चेतावनी को गा रहे तो भैया राजू कुशवाहा जी। अब दोस्तों, इनकी चेतावनी के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई चेतावनी अनखो। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: अरे भजन में।

0: बिल्कुल दोस्तों, भजन बिना खुदाई उम्र गया सारी। देखो कितनी प्यारी जा चेतावनी अपन सब जन ने सुनी है, और ये चेतावनी को आनंद लो। ये चेतावनी को गा रहे थे भैया धनी राम वर्मा जी। अब दोस्तों आओ सुनाते हैं एक क्रम में अगले साथी की चेतावनी को।
1: सारी उम्र

बिल्कुल दोस्तों, आय हाय ओए होए कर लो भजन ध्यान से। देखो कितनी बढ़िया चेतावनी सुनी है भैया जी ने, गाई है बाल मुकुंद जी ने। अब दोस्तों बाल मुकुंद भैया जी की इस चेतावनी के बाद आप फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ा उठे और कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई चेतावनी को। सो आज दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

0: बिल्कुल दोस्तों, रेमन तुम जय हो हम जानी, कितनी बढ़िया जा चेतावनी भैया बिशन भैया ने गा के सुनाई है, और ये चेतावनी में बिल्कुल आनंद आ गया है। अब दोस्तों यही क्रम में अपन फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई चेतावनी को। सो साथियों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: अरे हाँ तोरे गा